एक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सरबग

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम आदमी हां एक दमी दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगला श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुद बुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने

दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है भाई, एक पैसे दा सच चाहिदा है ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा है। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन भाई, ऐसी वस्तु कदी बाजारा विच विकिया ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, मर्दाने आख्या भाई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा है मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा है भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दम ही ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है मरना सच है, इसलिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुच्छा जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा

बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै एदे अमोलक श्वास जो वाहेगुरु ने तैनू बख्शे। तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया, जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा

गुरु नानक से की बादशाह बख्शिश कर दिया भाई पही प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया में

सच एकंकार सतनाम करत पुरख निर्भव निर्वेह अकाल मूर्त अजूनी से भंगुर प्रसाद जप आद सच गॉड सच है भी सच नानक ओसी भी सच एकंकार सतनाम करत पुरख निर्भो निर्वे अकाल मूर्त अजूनी

जब लवली आग निदार तुझे तब नौ पर्व पे फिर पे बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ जिन धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और देने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतां दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हलू कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगतां की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद भी अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख रूप बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने चुपे तो बने पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन ठीक से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी है तो तुम भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो माध

तो बाबा जी कहने लगे नहीं इतना थोड़ा खाओ जिदे नाल सारा दिन शरीर पीड़े ही ना खटे डकार ही ना। मुसलमान रोजे रखते हिंदू मत च वर्त रखे जाते हैं। यह मकसद की है? कोई रोजिया से वर्तों कोई हम थोड़ा खुश हो जाए। यह मकसद यह है कि रोजा रखना थोड़ा खाना जिद ना शरीर की शुद्धि। आम डॉक्टर कहते डॉक्टर जी शरीर भारी भारी रहती है एक दिन फाका कर ले मतलब रोजा रखना यह रोजा ही है। ये शरीर जोड़ा है वो ठीक हो जाता है। तो गुरु ने कहा है कि मेरा सिख एक दिन रोजा या वर्त नहीं रखता। गुरु का सिख रोज ही रोजा रखता है। और किस तरह थोड़ा समय थोड़ा ही थोड़ा अल्प आहार कलगी का पाठ लिखा है अल्प आहार सिर्फ इतना थोड़ा खाओ जिदे खटे डकार ही ना आए इतना थोड़ा खाओ जिदे शरीर सारा दिन पीड़े ही ना सबरस मिठे मनिए सुनिए सालोने हर कुर्सी मुख बोलने मारन नाद किए छत्ती अमृत पाओ एक जग को नजर करे बाबा और खाना खुशी खुआ जिस खाते तन पीड़िए मन में चले तो खड़े न खाओ मन विकारी मन बुरे पास के जन और खाने छड़ कितना थोड़ा समय बाबा जी कहने लगे इतना थोड़ा समो जिद अमृत वेला तो ही ना क्योंकि अमृत वेला पास सबकी छेवी पौड़ी केड़ी है आई सब कह लगे सतगुरु का उपदेश कमारा गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्होंने चौड़ी स्वागत कौने जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौने जो माता पिता का हुक्म है सिख कौने जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अंग छकना बाणी पढ़नी सत्संग में जुड़ना बुरे कमान छड़ना चाहिए ही अपने बनी ये गुरु का हुक्म है। गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है पर जिथे सिखी की रोशनी है उथे गुरु सतगुर का उपदेश बनावे जिस वे छह पौड़ियां चढ़ जाता है छह क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है। तो भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज सुनो सहज अवस्था की प्राप्ति तो आप अनुभव बार मिलियों दिया संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां पड़ी बड़ी संगत जुड़ी अब गुरमुख माई आए एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह नूह पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिखा जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैंने बड़ी खुशी हुई मान कुबेर करे वस्तु सामू पता ला गुरुद्वारे बेशक बना लो कोई हद नहीं गुरुद्वारे बनाने माड़ी चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साडा एक सहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान चार संगत जिसे चार चीजा हो गई बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सर उ गुरु नानक जरूर हो गए अब कोई समा ज्यादा हो गया पर ज्यादा होया जाया नहीं क्योंकि अब इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कोई समा चाहिए अब सवेरे जिस वे कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब कितनी साल वाली साखी तुसी किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड गई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फेर सुना दे उन्हां दा हुकम सच्चे है क्योंकि बाबा जी दे पिंड दे नेड़े ही रहण वाले सौंकियां दे रहण वाले उन्हां दा हुकम ते तुहाडा प्यार कितनी साल वाली साखी आ गई
کچھ زیادہ ہوا ہے تو سما سفر ہے آئی کری سلطنی جو سو مال بھی آئے تو تے پیار کو ویک کے سیو کا چت بڑا پسند ہے نہیں تو اتنا چل رہنا بڑا کٹ ہے اور یہ گرو بھی بخشش ہے یہ رحمت ہے گرو دی جو ساڈا من بھی نال جڑیا ہے تو آؤ ارداس کریے انوروجن دے پادشاہ ساڈے تے بخشش کرو یہ جہیا منزل سن گرمتری دے غریبی یہ ساری پوڑیاں اصل پر یہاں سے چڑھن کی کوشش کریے آستہ آستہ یہ دال یہ منظر ساڈے بھی مک جائے تو ساری من یاترا ختم ہو

फिर पथकहरे ने तेनो दुख नै भुख तिन निधन नूं कही। उस इंसान नूं उस नर नूं कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, वह निर्धन नहीं रह सकदा, वह निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक नै हुए तिनर से अंत न लई है, उथे शोक नहीं हो सकदा उसदे। तिनर से अंत न लई है, तिनर सेव नह करे वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समप है वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच ओनू वेखूगा। सहज समप है तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उसका स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जाऊगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, उहदे विच इन्नी शक्ति आजूगी वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नूं वसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ये सारे सुख उहनूं मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनूं ये सुख मिलणगे किनू ये वड्याईयां मिलणगियां। गुरु अमरदास सुप्रसिन्न जे जिहदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाणगे, ये सारे सुख ये सारे

अपनी पौड़ी विच बयान कीतियां ने। भगत कबीर साहब जेड़े बनारस विच रहिंदे ने, किसे ने कहा ऐ कबीर तू परमेश्वर दी भगती बड़ी करना है, पर ए दस तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब ने कहा मेरा गुरु कोई नहीं। दसण वाले ने कहा कबीर जिदा कोई गुरु ना होवे ओदी गति नहीं हुंदी। तां कबीर साहब ने कहा भाई मैनू ए भी दस दियो कि मैं गुरु किन्नू बनावां। तां दसण वाले ने कहा बनारस विच ही रहिंदे ने स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, तू उन्हां नू अपना गुरु बना। पर एक गल ऐ कबीर तू है जुलाया नीवी जात दा ते स्वामी जी उची जात दे। स्वामी जी ते जात पात नहीं देख दे, पर उन्हां दे चेलिया ने तैनू लाग नहीं लगन देना। ता कबीर साहब ने कहा फिर मैं की करा। ता दसन वाले ने कहा कबीर एक रस्ता है स्वामी रामानंद रोज सवेरे उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जेड़ियां पौड़ियां तू ओ इशनान करन वास्ते उतर दे ने उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मा पै जा। गुरु दी लोड़ सी, रात पई पर कबीर नू चैन किथे। मन तड़फदा है कदू ओ समा आवे के जदू मैं गुरु वाला बना। ओ वेला जा दुनिया दे लोग सौंदे ने पर प्यारे उठदे। कबीर साहब करों तुरे मुंह सिर लवेटिया गंगा दियां पौड़ियां ते जाके लम्मे पै गए। इंतजार करन लगे कदू स्वामी रामानंद आन ता मैं गुरु वाला बना। भाई गुरुदास जी बयान करदे ने होए बिरकत बनारसी रहिंदा रामानंद गुसाई। अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई। ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने, क्योंकि रब दे प्यारे रात सौं के नहीं बतांदे, ओ ते रात जाग के बतांदे ने गुण गा के।

अपना परना मोढ़े ते मारिया। गंगा घाट इनान करने वास्ते तुर पे ने जदू स्वामी रामानंद गंगा घाट पहुंचे

समा बीते। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए। ए मूर्ति पूजा नहीं सन करते, कमरे का बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नूं इशनान कराया करते सन। और एक दिन इशनान करा रहे ने ठाकुर नूं, कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया, अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकता, मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाणा होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकता, जे हार ना पावा पूजा पूरी नहीं होंदी। इन्ने नूं कन्नां विच इक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है, गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए, बुआ खोलिया, बार की देखते ने भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां, अमृत वेले गंगा दिया पौड़िया ते सुता सा, ता तुसी कहा सी उठ राम के राम को, ओदू दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए, मन पार आया, उन्हां कबीर नूं बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया। ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर तू हुण सेवक किथे, तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए, जिन्हें मन दी गल जान ली ओ सेवक किथे। और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई, ए अमृत वेले जागण दा फल के कबीर विच ते राम विच, उस वाहिगुरु विच

बेशक सारे सिंगार कीते ने पर जे नक नहीं ते इंसान चंगा नहीं लगता। इसे वास्ते भगत जी ने कहा तेरे कोल सारे सुख ने, माया भी बहुत है, रहन वास्ते घर भी है, दुनिया का हर सुख है, पर जे तेरे कोल परमेश्वर का नाम नहीं ते समझ जिस तरह नक तू बगैर

उस हरी ने बाकी इंसानां नूं भी पैदा कीता। तुहाडे विच भी हरी, उहनां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करदे? ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾਦ ਮੁਖੋਰਾ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ।

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो ता जरूर दे। सेठ हंकार विच हसे है, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पे है तुलसीदास जी दे उते राम लिखे है। ते सेठ ने हसदिया होया थोड़ा जिहा सोना तकड़ी दे दूसरे छापे पाया, पर हैरान हो गया वो राम वाला छाबा उते नहीं उतरे। एक तोला, दो तोले, पांच तोले, दस तोले करदिया करदिया जिन्ना भी सोना सी उस तकड़ी विच पा दिता, पर जिहड़े राम दे अखर वाले

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे

और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप में जिसनों हिंदी में सांड कहते हैं रूप में भजे आए तो वह जड़ा पहाड़ से समा गए तो शरीर का पिछला हिस्सा उस पहाड़ के बाहर है जिदी के